ये पाक अपना भी मदन होता। फोर्सेज यही है आरजू व साकिब, यही अपनी तमन्ना है। दिस इज माई डिजायर, दिस इज माई तमन्ना। दिस बॉडी ऑफ माइंड मस्ट बिकम ए पैच ऑफ द अर्थ ऑफ मदीना शरीफ, ऑफ द ग्रेवयार्ड ऑफ मदीना शरीफ, बकीए पाक। सो दैट इज वन डिजायर ऑफ माइंड विच इज वेरी वेरी स्ट्रांग इन माई हार्ट, दैट आई लिव माई लाइफ और द रिमेनिंग डेज ऑफ माई लाइफ इन मदीना शरीफ। वहीं जीता वहीं मरता वहीं गौरव कफन होता। And this body of mine was turned to dust in the graveyard of Madina Sharif, where more than 10,000 companions of Nabi alayhi salatu wasalam are buried, where great, great sahaba are buried, great, great awliya are buried. Nabi alayhi salatu wasalam on the day of Qiyamah, he says, I will rise. Then Abu Bakr and Umar radiallahu anhu will rise. Then the people of Baqi will rise. Then he will take them all and go halfway to Makkah Sharif and wait for the people of Jannatul Ma'ala to come. How fortunate those people are. May Allah Tabaraka wa Ta'ala give us all or bless us all with that great ni'mat of death in Madina Tayyiba. But if it is not Muqaddar there and every person cannot die there, so then at least wherever the person is, he must die in a state that his heart is in Madina Sharif. He is making amal on the teachings of Nabi alayhi salatu wasalam and getting the rahmat and the barakat of those actions. Allah Allah kaisa pyara naam hai, aashiqon ka meena aur jaam hai. अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है।

याद में तेरी सबको बोला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लौटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस

रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। ओ अल्लाह आई एम एट योर डोर, ओ अल्लाह आई एम एट योर मर्सी, ओ अल्लाह आई हैव प्लेस्ड मायसेल्फ बिफोर यू, आई एम हेल्पलेस, आई एम वीक, आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ, आई एम ब्रोकन हार्टेड, बट ओ अल्लाह व्हाई शुड आई रिमेन ब्रोकन हार्टेड when my taluk is with you, who is a kareem rab, who is a forgiving rab, who is a merciful rab, who has got his doors open for the sinners long as they return. So why should I remain broken hearted? Why should not I have this heart repaired?

अकेला तू अपने वतन जाएगा। गड़ा कब्र का हश्र औलपुर से रात, गड़ा कब्र का हश्र और पुल से रात, ये रास्ता बड़ा ही खटन जाएगा। गड़ा कब्र का हश्र और पुल से रात, ये रास्ता बड़ा ही खटन जाएगा। First the qabr, then the hashr, then the pul sirat. It's not an easy road. When we are traveling to any distant place, we check the maps. Which towns come on the way? Which cities come on the way? Will we be able to fill up petrol on the way? Or will there be any garages? Or no garages? Will we be able to get refreshment on the way? How many kilometers between these two towns and cities? We check all those things before we travel a journey that is unknown to us. And this journey that we have to travel from here till Akhirah, till Pul Sirat, and in the Alam Barzakh, we don't know how long, and then Hashar, Qiyamah, Pul Sirat, and we don't find out that what will make this journey easy. Like how we ask others, what will make this journey easy? I'm trying to go a long distance. How will I be able to make this journey of mine easy? So we make so much of inquiries. And this journey that we have to undertake from here till there, what inquiries we make? Do we go and find out that what will make that journey easy for me? गड़ा कब्र का हश्र और पुल से रात, ये रास्ता बड़ा ही कठिन जाएगा। ये रास्ता बड़ा ही कठिन जाएगा। न कुछ माल और दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा। न कुछ माल और दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा। जो बनना है तुझ पर वो बन जाएगा, जो बनना है तुझ पर वो बन जाएगा। रहेगा वो ही मर के आराम से,

रह गई हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरा की तस्की वहीं रह गई। जिस जगह सजदा रेजी की लज्जत मिली, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिली, जिस जगह नूर रहता है शामो सहर, वो फलक रह गया वो जमीन रह गई, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरा की तस्की वहीं रह गई।

जी रह गई हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरा की तस्की वही रह गई।

अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल जलालुहू।

या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे। जो मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे। ओ माय बिलवर अल्लाह, विद योर फजल, विद योर काइंडनेस, विद योर एहसान, विद योर फेवर, ब्लेस अस विद द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर। वी नो दैट वी आर डिजर्विंग ऑफ योर एंगर, ऑफ योर रॉथ, बट माय बिलवर अल्लाह, यू लव फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, so therefore give us aman, give us salvation, give us najat. You dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you. Ya Rab karam se apne tu dono jahan de. Jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de.